0: हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई।
1: हम अवगुण भरे एक गुण ना ही डंडियां लगिया, गलत है, छापे च गलती हुई जां किस तरह? इथे जी हम अवगुण भरे एक गुण ना ही अमृत छाड़ दिखाई, सारी पंक्ति कठी है, डंडियां नहीं आई अगे। हांजी,

0: तरसायो
1: और ब्रह्म थे विश्राम लो।
0: गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अनुभव ठहरायो।
1: पढ़ो
2: पढ़ो
1: आगे पढ़ो।
2: जनक राम।

0: बिमल बुद्ध सतगुर समाणो।
1: बिमल पाठ ही करना, बिमल नहीं करना। बिमल बुद्ध सतगुर समाणो।
0: आजोनी आजोनी

ऐसा बंदा खतरनाक साबित होंदा है। हुण उहदे हथ भी ने, पैर भी ने, जबान भी है, अखां भी हैगियां ने, कन भी हैगे ने, पर चूंकि दिमाग ने तो इन्हां सारिआं इंद्रियां दा उह सही इस्तेमाल नहीं कर सकदा। इस वास्ते उह खतरनाक है, उहनूं पागलखाने भेजणा पैंदा है, क्योंकि पागल नूं नहीं पता मैं की बोलना है की नहीं बोलना, की वेखना है की नहीं वेखना, किहड़े पासे चलना है किहड़े पासे नहीं चलना, की करना है की नहीं करना, सोच नहीं सकदा। शक्ति सारी उसदे कोल है, पर शक्ति दे प्रयोग करन दा ढंग उसदे कोल नहीं। वह सोच नहीं सकदा, वह विचार नहीं सकदा। तो विचार शक्ति एक बहुत वड्डी शक्ति है, महान शक्ति है। जो विचारदा रहा, सोचदा रहा, जहन तो बहुत कम लिया, ठीक है, उसका सन्मान तो चाहिदा सी, लेकिन अलग धड़ा बन जाना, अलग वर्ण का बन जाना, अलग ग्रोह का बन जाना, यह मनुखता वास्ते घातक साबित होया। इस वास्ते गुरु नानक ने चार वर्णा नूं एक करन दी कोशिश कीती। साहिबां ने यह फरमान किया, पूर्ण मनुखी होई है जिस दे अंदर चारे ही वर्ण होवन, एक एक वर्ण नहीं, क्योंकि एक एक वर्ण करके जिंदगी अधूरी होवेगी, जिंदगी लंगड़ी होवेगी। जिस दे अंदर शूद्रपणा नहीं, उहदे पैर ही कोई नहीं, जिस दे अंदर खत्रीपणा नहीं, उहदे ते हथ ही नहीं ने, ते जिस दे अंदर ब्राह्मण की बिरती नहीं, उहदा ते सिर ही नहीं है, ते सिर तो बिना धड़ दी की अहमियत है, सिर तो बिना समुचा शरीर की मैंने रखदा। तो कुछ मनुख ऐसे ने जिन्हां दी सोचण दे च, विचारण दे च ही रुचि है, इसे दे च ही रस है, ये बंदे ब्राह्मण ने, ते कुछ ओ जो शक्ति दे च रस रखदे ने, ये खत्री ने, कुछ ओ जो सिर्फ धन दे आले दुआले, भोजन दे आले दुआले ही परिक्रमा करदे ने, ते धन संचन करना ही जीवन मनोरथ है, ऐसे पुरुष वैश ने, ते कुछ ओ जो वजनी काम तो बिना होर कुछ नहीं कर सकते। प्राचीन एक कथा है कि लाहौर देच एक छज्जू नाम दे भगत सन, उन्हां नूं चंद मजदूरां दे उत्ते बड़ा तरस आया जो धुप देच पिट्टां ढो रहे सन, मिट्टी ढो रहे सन, किसे महल दी तामीर देच लगे हुए सन, पर धुप देच काम कर रहे सन, बड़ा तरस आया। चार मजदूरां नूं छज्जू ने बुला लिया और आख्या, ये दिन भर जो तुसीं कम करदे हो थानू की मिलदा है? प्राचीन समा सी, आख्या सानू आठा ने रोज मिलदे। भगत छज्जू कहण लगे, मेरे घर आओ, उत्थे कम करो, मैं दुगुनी मजदूरी देंगा, एक रुपया रोज देंगा। ये चारे मजदूर भगत जी दे घर सवेरे पहुंचे, ते कहण लगे, भगत जी की कम है, कम की करना होवेगा सानू? चारां दे हत्थां विच माला पकड़ा दित्ती, बिठा दित्ता और आख्या, राम राम दा बस रटन करो, एक दूजे दी तरफ वेखना नहीं, माला फेरी जाओ, राम राम दा रटन करी जाओ और उसे विच ध्यान जोड़ो, मैं थानू दुगनी मजदूरी देंगा और एक कम अद्धा दिन करो। उत्थे पूरा दिन तुसी कम करदे सी, मजदूरी अठा ने मिलदी सी, इत्थे अद्धा दिन ये काम करो, मजदूरी मैं दुगनी देंगा। एक दो मिनट ते विचारे राम राम करदे रहे, पर एक दूजे दी तरफ वेखन ता छज्जू रोके, लेकिन एक दूजे दी तरफ देखे बिना उन्हां नूं चैन भी ना आवे। फिर छज्जू ने यह कहा कि धुन विच ध्यान जोड़नी, जो राम दी धुन अलापो उसे विच सुरत जोड़नी, उसे विच ध्यान जोड़ना बड़ा औखा हो गया उन्हां वास्ते। कुछ देर ते करदे रहे, फिर एक दूजे दी तरफ देखन, फिर गल्लां बातां करन दी रुचि होवे, आखिर छज्जू रोके तां खिज के चारा ने माला सुट दित्ती, आख्या, सीटां ही ढोणियां ने, यह कम साथों नहीं होना, यह बारीक कम है, यह दिमागी साधना ते खड़ा है, यह जहनी साधना ते खड़ा है। हर मनुख जहनी ने कम नहीं कर सकता, ते हर बंदा शरीरक कम भी नहीं कर सकता। मनुख दी अपनी अपनी रुचि होंदी है, ते रुचियां दे मुताबक ही उसकी किरत चलदी। इसे करके साडे देश दे ऋषि मुनिया ने वंड कर दिती है, ब्राह्मण है, ये खत्री है, ये शूद्र है, ये वैश है। हजारां साल तो ये वंड चली आ रही सी। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने इस वंड दे सुधार किया और आपने कोशिश की कि एक ही मनुख दे अंदर चारे वरण चाहिए, ताई मनुख

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीव नू हर जीवन नू तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देश पाश, जो पिछे रह गए पाश देश रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देश रह गए पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देश इस पशु जगत देश चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा के कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते हैं। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है, तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने जैसे कि हिमालिया, पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे ने, जिन्हां कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गलते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है गलते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह का जीवन जीवदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनों कहते हैं
जो समाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूरन पुरख, मुकम्मल इंसान, पूरन पुरख। वो पूरा है जिसका समाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनैतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल पे पूरा है।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील मम शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये मम कर्ता नानक लेप छेप नाल पियते। सन्माननीय गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आरंभ करा। पेशकर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिया समय च, वो मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दो पंक्तियां नू आधार बना के, है हजूर कत दूर बतावो, बुंदर बांधो सुंदर पावो। पंक्तियां मैं फिर दोहरावां, है हजूर कत दूर बतावो, बुंदर बांधो सुंदर पावो। दूर क्यों कहंदे हो? जगत विच जो कुछ भी सानू मिलदा है एक दिन बिछड़दा है। कुछ भी मिले दूर क्यों जाइए? तन मिलदा है, तन भी बिछड़ जांदा है। मां बाप मिलदे ने, बिछड़ जांदे ने। परिवार दे संबंध बनदे ने, टुट जांदे ने। और इस तरह यार दोस्त मिलदे ने, मित्र मिलदे ने, संबंधी मिलदे ने, आखिर बिछड़दे ने। या असी विछड़दे हैं या वो विछड़दे ने, वारी वारी सब दा विछोड़ा हुंदा है। पातशाह दी बाणी कहंदी है, एक सदी भी मिलिया होया, जन्म तो मिलिया होया, ते कदी विछड़िया भी नहीं, लेकिन उसका पता नहीं है, बोध नहीं है। सत्संग दा मतलब इन्ना है, सानू उसकी समझ आ जाए जो कदी विछड़दा ही नहीं। सानू उसकी समझ आ जाए जो सब थां ते है। हर जगह मनुख दा परिवार नहीं है, हर जगह मनुख दे मित्र नहीं है, हर जगह मनुख दा वतन नहीं है, हर जगह मनुख दा घर नहीं है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है। सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते, हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं आंदे, पुत्र नहीं आंदे, परिवार नहीं आंदा, निरंकार हर वक्त नाल। सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते, जो सदा संग है वो भूल गया है। जिन्हां दा संग वक्ती है कदी कदाई है, वो याद दा हिस्सा नहीं, याद आंदे। तो हुण मैं अर्ज करा, जिस दी याद आवे संबंध जुड़ जांदे ने, जिहड़ा भुल जावे संबंध टुट जांदा। रिश्ते याद देने, याद चल रही है, रिश्ता जुड़े होया, भुल गए हां, रिश्ता टुटिया। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकदे, बुलाया है, बुला सकदे। लफ्ज में फिर दोहरावां, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकदे, बुलाया है, बुल सकदे। इस वास्ते संसार दे सारे अवतारी पुरुष गुरु जना ने एक आवाज होके आख्या, याद करो। उर्दू च कहंदे ने याद करो, पंजाबी च कहंदे ने चेते करो, संस्कृत च कहंदे ने सिमरन करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो। किस नूं? जिन्हों भुल गए, जिन्हों भुल गया। भुले क्यों? समझ नहीं और अकल प्रभावित भी नहीं। जिस तो मन प्रभावित हो जाए, समझ प्रभावित हो जाए, वो याद का हिस्सा बन जाता है, भुलदा ही नहीं। पुत्र नू याद करना होवे, वाजा वजाण की लोड़ नहीं, तबला खड़कान की लोड़ नहीं, पुत्र की याद आपे ही आउंदी। मित्र नू याद करना होवे, कथा कहानियां की लोड़ नहीं है, आपे ही याद आउंदा।
परिवार नू याद करना है, धन संपदा नू याद करना है, पदार्थां नू याद करना है। कोई फिलसफा घोटन की लोड़ नहीं, किसी रागी सिंह नू कहन की लोड़ नहीं, तू राग अलाप जरा मैं परिवार नू याद कर लवा, पदार्थां नू याद कर लवा। उन्हां दी याद आपे आउंदी, क्यों? उन्हां दी समझ है ते समझ प्रभावित है। जिस तो मन प्रभावित होवे वो याद का हिस्सा बन जाता है, जिस तो मन प्रभावित नहीं, कुछ है मामूली है एवें है या है ही नहीं, वो याद का हिस्सा नहीं बनता, वो याद नहीं आता। कमाल की गल है, पुत्र याद आता है, मित्र याद आता है, परिवार याद आता है, पदार्थ याद आते हैं, धन संपदा याद आती है, संसार याद आता है, बोलता है तो केवल निरंकार ही भुलता है और सारे जगत नूं भुलता है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं आते उते भुले हुए ने, पर जिहड़े आते ने उन्हां नूं भी भुलता है। इस चक्कर च ना पैना। 1000 किधरे सत्संगी बैठे हन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, तो मैं इतनी गल दावे नाल कह सकदा कोई एक अद होवेगा जिद याद आंदा होवेगा, बाकी नहीं। बाकियों लई गुरुद्वारे आना भी मनोरंजन है, कथा कीर्तन भी मनोरंजन है, यह भी मैं अर्ज कर दें। जो याद का हिस्सा बने, समझ लो मन उस तों प्रभावित है। मनुख पदार्थ तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित नहीं। तो पदार्थ की खातर परमात्मा छोड़िया जा सकता है, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं। मनुख परिवार तो प्रभावित है, निरंकार तो प्रभावित नहीं। परिवार की याद है, निरंकार की याद कोई नहीं। मनुख धन तो प्रभावित है, धर्म तो नहीं। इस वास्ते धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, परिवार की खातर निरंकार बुलाया जा सकता है, संसार की खातर पदार्थां की खातर परमात्मा नूं परे सुटिया जा सकता है। और ऐसा है कि ठीक है, पदार्थ उसे ही ने बनाए ने, संसार

कथा कर रहे हैं उसकी याद नहीं है, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उसकी याद नहीं। और जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, हृदय पवित्र नहीं हो सकता। जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, खेड़ा नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती। तो रोंदे पिटदे मिलणगे कीर्तन करने वाले, रोंदे पिटदे मिलणगे पाठ करने वाले, अक्सर दुखी मिलणगे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद आण वाले। ऐसे कुछ भी नहीं, एक सच्चाई है। ये तो हूं मैनू नहीं पता किन्नी क सच्चाई तुम सुन लेंगे हो, तो बड़ा आजमा किन्ना क है। अगर परमात्मा आनंद है तो फिर मनुख दुखी क्यों है? गुरुद्वारे आण वाला तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा आनंद है, खुदा आनंद है, तो नमाजी तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर सुख का सोमा है, तो मंदिर पूजा पाठ करने वाला तो कल्पना दुख तो नहीं होना चाहिए। पर मैरज करा रो रहे ने मंदिर आने वाले, और तरह तरह के रोने धोने धो रहे ने गुरुद्वार आने वाले, नमाजी अपनी थां ते रोना पिटना जारी रखी बैठे ने। परमात्मा आनंद है और खुदा भी अगों सजदे करने वाला दुखी है। परमात्मा आनंद है, कथा कीर्तन करने वाला रो रहा है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है। परमात्मा आनंद है, ये धार्मिक मंदिरों के आण वाले को कुछ भी नहीं है। कारण मन प्रभावित नहीं है, क्यों समझ नहीं है। तो मैं अक्सर बयान करता हूं ना, तो दोहरा दया जो मेरी समझ दिच नहीं, नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा है, परमात्मा मेरी समझ दिच नहीं है तो नहीं है। है परमात्मा, ईश्वरी है, उस तो बिना कुछ नहीं, पर मेरी समझ दिच नहीं है तो नहीं है, मेरे चेते दिच नहीं है तो नहीं है। जरूर गल पकड़ दिच आई होगी। क्या वाकई परमात्मा समझ दिच आ जाता है? नहीं, समझ समझ के एक समझ मिलती है कि हे प्रभु तू मेरी समझ दिच नहीं आ सकता, तू मेरी समझ दिच नहीं आ सकता। क्यों? तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम, तू इतना वड्डा है, इतना वड्डा है असीम, मेरी सोचन शक्ति बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, मैं कितने तेनू समझ सकता। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू समझ नहीं सकता। तो समझ प्रभावित हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है वो तो सागर है, तो मेरी अकल तो एक प्याला है, प्याले सागर किथे आएगा। तू समर्थ वड़ा, तो जैसे मनुख की अकल प्रभावित होती है, मनुख याद कर लग पैंदा है। बिसरत ना ही मन ते हरी, बड़ी कीमती पंक्ति है, प्रभु ते भुलदा ही नहीं। हुण बुलाण दी लख कोशिश करिए नहीं भुलदा। बिसरत ना ही मन ते हरी, क्यों समझ आ गई? की समझ आ गई? समझ समझ के ए समझ आई है, हे प्रभु मैं सारा तेनू समझ नहीं सकता, मैं तेनू याद कर सकता, मैं तेनू समझ नहीं सकता। उर्दू दे एक माया नाथ शायर होए ने, कोई गालबन 150 साल होया है, बहादुर शाह जफर दे जमाने दे, उना दे दरबारी शायर सन, उस्ताद जौक। वो कहते ने हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, कहते पढ़ने वास्ते में पिया स्कूल सोचता से कुछ समझ जावांगा, पढ़ लिख के कुछ पता चल जाएगा खुदा बारे, संसार बारे, परमात्मा बारे। हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। पढ़ पढ़ के जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी च लिखता है अपनी आप बीती विच, कहिंदा जद मैं बच्चा सी बच्चियां नाल खेडदे आया, मैं डिंगा मारदा सी कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां ते मेरा रोब बनिया रहिंदा सी,

0: दूसरा मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, बोले या तो सच है पर फिक्का बोले। कह सकदा सी बे मित्रा तेरिया अखां कदों खराब होईया, पर ये सीधा कह रहे है तू कदों दा अंधा होया। गल ते दोवें ठीक है ते सच्चाई, पर फिक्का है, फिक्का बोलना तू कदों दा अंधा होया। है ते सच्चाई पर फिक्का बोलना, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, क्रोध वसो के कौड़ा बोलना, ये चार पाप जबान देने। कोई मनुख एक दफा फिक्का नहीं बोलता, एक दफा कौड़ा नहीं बोलता, एक दफा मिथ्या नहीं बोलता, एक दफा व्यर्थ नहीं, जीवन भर बोलता रहता है। ये चार पाप जबान देने, तीन पाप मन देने। किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसे दे माल बारे बुरा सोचना, खोन दी सोचना। किसे दी इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना, ये तीन पाप मन देने। ते बुरा मनुख एक दिन नहीं सोचता, एक दफा नहीं, जीवन भर सोचता। किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसे दे माल बारे बुरा सोचना, और किसी की इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना, है तीन पाप मन दे, तीन पाप तन दे। किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी, ये दस दोख ने, दस पाप ने, और ये जीवन भर रिपीट होते रहते, हजारा लखा बन जाते, आनंद बन जाते, और फिर कई जन्मां दे कट्ठे होते रहते, पिछले धोंदे ने अगले होर कठे करी जांदे। जीवन दर जीवन ए पाप कठे होंदे रहंदे, और इतने कठे हो जांदे ने, औखे ना होना मनुख नू वेखिए मन ते दिखाई नहीं देंदा, पाप दिखाई देंदे, मनुख नहीं दिखाई देंदा, मैल दिखाई देंदी, झूठ दिखाई देंदा। देखिए मैल दिखाई दे रही, इतनी जम गई, इतनी जम गई है, कपड़े का रंग खो गया, कपड़े का रूप खो गया, परत दर परत मैल दी, मैल दिखाई दे रही। जन्म दर जन्म ये पाप कट्ठे आते रहे, कट्ठे आते रहे, मनुख ते दिखाई नहीं देता। मनुख का दिखाई देना की है, ये विचारशील है, ये चिंतन करता है, ये सोचता है, और इस तरह सोचता है, जो मन अपना पर मन तैसा। जिहड़ी गल मैनू नहीं चंगी लगती, दूसरे नू भी नहीं चंगी लगती। जिस गल नाल मैनू चोट पहुंचती है, दूसरे नू भी पहुंचती है। जैसा वो अपना मन समझता है, दूसरे का भी समझता है। जितना वो अपने मन नू समझता है, इतना ही दूसरे दे मन का ख्याल रखता है, चोट ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है जो मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे के मन भी नहीं चंगा लगता। ऐसा है तो ये मनुख है, पर इतने पाप इतनी मैं मनुख ते दिखाई नहीं देता। गौर नाल देखिए, मनुख नहीं दिखाई देता, कौड़ा राक्षस असी कही जाने हैं, साधु से जो मैं इसकी जीवन कथा पढ़िए, साधना करता सी, बड़ा भारी तपीश्वर सी। लेकिन इस देते इदे साथियों ने कुछ गलत इल्जाम लाए, मनुखता दे बारे बदले की भावना इस अंदर पैदा हो गई, भटक गया, भ्रष्ट हो गया। जैसे शायद तुसी सुनिया होए उंगली मार, महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु उंगली मार, वो भी इस तरह से साधु से, लेकिन कसम चुक ली, 1000 मनुखां दियां उंगलियां मैं अपने गल दे पाने जाने, प्रण कर ले, कसम चुक ली, और एक हजार उंगलियां गल विच पाण वास्ते सैकड़े मनुख ते मारने पैणगे और मारे हो सके। कहिंदन बहुत वड्डी माला इसने गल विच पाई हुई सी, बदबू आवे सड़ान दा हैगा साधु से। और अज महात्मा बुद्ध लंघे ने उस रस्ते तो जिथे उंगली माल सी, लोगों ने उधरों लंघना बंद कर दिता, मशहूर हो गया सी उन्हें मार देना। लोकी महात्मा बुद्ध नूं रोकदे ने, ये रुकदे नहीं, चले गए। सामने बरछा लेके बैठा दूरों देख रहे, मासूम चेहरा अखां विच पवित्रता। उंगली माल कहिंदा इस रस्ते तो कोई नहीं लंघदा, तू भुलेखे नाल किस तरह आ गया। महात्मा बुद्ध कहिंदे जान बुझ के आया, भुलेखे नाल नहीं आया, जान बुझ के आया। बरछा चुक लिया उसने, कहिंदा अज फिर मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, दो तीन उंगलियां होर रहिंदियां ने, मेरी हजार उंगलियां दी माला पूरी बन जाएगी, तेनू मैं मारना नहीं छोड़ना। महात्मा बुद्ध कहिंदे जरूर मारी छोड़ी ना, पर एक निक्का जिहा काम तू कर दे मेरा, बहुत छोटा, बिल्कुल मामूली, और मैं खुशी नाल मरना कबूल कर लवांगा। की काम? इस सामने दरखत तो एक पत्ता तोड़ लिया, जिस दरखत दे थले तू बैठे तोड़ लिया पहले। महात्मा बुद्ध कहिंदे ने मारन तो पहले तू कम मेरा पूरा कर दे, अधूरा कीता है, पत्ता तोड़ के लियांदा हुण जोड़ दे, इनू जोड़ दे। कहिंदे ने उंगली माल हस गया, कहिंदा लगदा है पागल है तू, मैं तोड़ सकदा मैं जोड़ नहीं सकदा। महात्मा बुद्ध कहिंदे ने जब तू जोड़ नहीं सकदा तो तेनू तोड़न का हक किसने दे दिता, तू क्यों तोड़दा जो तू जोड़ नहीं सकता। तोड़ ते कोई बच्चा भी लवेगा, कलाकार ते तेनू ताम नहीं कि जोड़ के दिखा। बरसात तो गिर गया, चरना ते गिर गया, ये बोध भिक्षु बने बाद। कौड़ा राक्षस इसे तरह का सी, साधु सी, बड़ी तपस्या की थी, लेकिन इस दे उते कुछ इहदे नाल जो विद्यार्थी पढ़ते सन आश्रम विच गलत इल्जाम लाए, तो इस दे अंदर बंदियां दे बारे बदले की भावना पैदा हो गई, बंदियां नूं मारन लग पिया, आदमखोर हो गया। अज गुरु नानक आए ते वेखदे ने, कहिंदे हद हो गई, तुसी मैनूं मनुख जैसे दिखाई देंदे। कौड़ा राक्षस कहिंदा है इहदा मतलब है कुछ गहरी दृष्टि इस कोल भी सी, जन्म साखियां च कहिंदी, क्योंकि जब सतगुरु ने कहा तू बंदिया ना क्यों मारना, कहिंदा नहीं मैं पशु मारे ने, बंदे नहीं मारे, मैनूं पशु दिखाई दिते। अज पहली दफा देखदा पिया एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, और इंसान दे रूप दे भगवान की झलक मिल रही है। एक कौड़ा राक्षस कहिंदा इसका मतलब दृष्टि इस कोल भी सी, पुरानी पढ़ाई कम आ गई, पुरानी सूझबूझ कम आ गई, कईयां दे मन दे उते इतनी मैल जम जाती है, इतनी मैल जम जाती है, मानो मनुख नहीं दिखाई देते, शैतान दिखाई देते, पशु दिखाई देते, इतनी मैल जम गई। और गजब की गल, मैल दे च रहण दी आदत बन गई, कपड़ा दिखाई नहीं देता, तन ते जो पाया है इतनी मैल, इतनी परत, घर परत मैल दिखाई देती है, और इस मैल नूं पहनण दी आदत बन गई, पाप दे च जीण दी आदत बन गई। पाप दे चरेना आदत बन गई, झूठ बोलना आदत बन गई, व्यर्थ बोलना आदत बन गई, फिक्का बोलना आदत बन गई, कौड़ा बोलना आदत बन गई। हर वक्त मन विच बुरा सोचना किसी की जान बारे, किसी की इज्जत बारे, किसी के माल बारे मन का सुभाव बन गया। ये पाप जीवन भर रिपीट होते रहते, अनंत कट्ठे हो जाते हैं। इनू किवें धोईए? ये धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे जो है दसदे ने, खुलासा मैं थोड़े सामने गल करांगा। भरिए मत पापा के संग, ओ धोबे नावे के रंग। काश किधरे ये पाप भी पानी नाल धुलदे, तीर्थां विच कोई डुबकी लांदे ते पाप धुल जाने। दुनिया विच कोई तीर पाप नहीं धो सकता, इसे पौड़ी च खुलासा आ जाएगा। आम साधारण पानी ये पाप नहीं धो सकता, तीर्थां दा जल भी नहीं धोवेगा, कुंभ दा इशनान भी नहीं धोवेगा, माघी दा इशनान भी इस पापां दी मैल नूं नहीं धो सकता। ये किवें धुलेगी? ये मैल किस तरह फिर मिटेगी? गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खुलासा पेश किया है, मैं फिर अर्ज करा। काम क्रोध पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहें सब उतरे। तीर्थां दे उत्ते इशनान करदिआं भी मनुख पाप कर बैठेगा, की पाप धुलणगे होर पाप करेगा। कहिंदे ने बनारस उन नगरी ते शिव जी ने ऐलान किया सी अपने जमाने च, जद ये नगरी वसाई सी, भई बनारस दे संत सारी दुनिया च मशहूर होणगे। भारत दे च बनारस दे ठग मशहूर ने, संत मशहूर ने। ते कबीर नूं भी कहना पिया, गले जिना जप मारिया, लोटे हथ ने वग, ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। बड़े बड़े तीर्थ बड़े बड़े ठग बैठे हैं। बदू मक्के दे जी ने बड़े बड़े हिंसक बिरतियां दे मालक पवित्र तीर्थां ते बैठे, कोई पाप नहीं धुले। बड़े बड़े तीर्थ जितना तुसी बर्दाश्त कर सकते मैं उतना ही अर्ज कर सकता। बड़े बड़े कुकर्मी बैठे हैं, बड़े बड़े दुष्ट बैठे हैं। तीर्थां दे जल नाल दुष्टपना नहीं धुलेगा, पाप नहीं धुले। और गुरु नानक मनते भी नहीं तो अगों पौड़ी जिक्र भी आ जाएगा। फिर ये मैल किवें धोएंगे, किस तरह धोएंगे? प्रथम तो इस मैल नूं वेखना ही बड़ा औखा। मिथ्या बोली जांदा है, कभी ख्याल नहीं आया मैं मिथ्या पे बोल। कौड़ा बोली जा रहा है, कभी ख्याल नहीं आता मैं कौड़ा बोली जांदा। बुरा सोची जा रहा है, कभी नहीं ये सोचनी आई कि मैं की सोच रहा, ये विचार की चल रहे। अगर कोई ऐसा देखने लग पवे उन्हों मनीष कहते हैं। ये अपना मन वेखन लग पा, तो जिहड़ा अपना मन वेखन लग पवे सारियां दा वेखन लग पैंदा। फिर मानसिक कमजोरियां दा उसनों पता चल जाता है, दूजियां नूं माफ करन दा भी जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्हों पता चल जाता है मन की है, मन की फितरत की है। निवाण दिश जाना इसकी आदत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जिवें खोलणगे तुच बुद्धि अनुसार ये विचार, दास कल थोड़े सामने खुलासा पूर्वक रखण की निवाणी कोशिश करेगा। साहब रहमत करन, बख्शिश करन, जिवें पानी नाल मुंह मथा धो लैने, साबण ते पानी नाल कपड़े धो लैने, सानू मन दे धोण की भी जाच है। मैले कपड़े समाज नूं नहीं चंगे लगदे, मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता, नहीं करता, परमात्मा नूं चंगा नहीं लगता। मुंह मथा मैला है, समाज कबूल नहीं करता। मन मैला है, परमात्मा कबूल नहीं करता। और जिसका मन मैला है उसका दान पुन भी मैला है, जिसका मन मैला है उसकी सेवा कथा कीर्तन भी कोई शुद्ध नहीं है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। जे मन मैला है तो सारे कर्म मैले ने, कि जो कुछ भी करता पे ठीक नहीं है, उतने चिर तक तो ठीक नहीं है जितने चिर तक मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल है तो इसको जो कुछ भी हो रहा है सब निर्मल है, सब ठीक है। पर जे मन मैल है तो साहब कहते मन मैल है सब किछ मैल है। इहदे दान देच भी हंकार होगा, इहदे ज्ञान देच भी अग्ञान छुपे होगा, इहदी पाठ पूजा दे थले भी पखंड होगा। ये भी मैरस करते हैं, इहदा पुन पुन नहीं होगा। मन मैल है सब किछ मैल है, तन धोते मन अच्छा ना हो तो मन अच्छा किस तरह होता है, निर्मल किस तरह होता है। गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ दसणगे तुझ बुद्धि अनुसार अरदास खुलासा कल थोड़े सामने रखेगा। इत्थे ही समाप्ति। बार बार सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। गुर सुखदी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ी वार जो जपजी साहब दे विचार आरंभ है, इस पौड़ी दे मुख भाव यह है, मैले होने लई ते कोई यतन नहीं करना पैंदा, पर निर्मल होने लई यतन करना पैंदा। क्यों? मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न बारावार। जन संसार मैला ही है तो विचर दया हाथ पैर मुंह मथा कपड़े ते मैले हो, क्योंकि संसार मैला है। सवेरे मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मथा मैले, हो गए कपड़े मैले। भावे मैल मनुख दी मंग नहीं है, मेला हो जाता है बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़िया हाथ पैर मुंह मथे मैला कर देंगी। जगत मैला है, दूर क्यों जाओ? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कजल दी कोठड़ी कहंदे। काजल कोठ में भई न कारी, निर्मल वर्ण बने ओरी। कमाल है एक कि जन्म कजल दी कोठड़ी दे चंदे, जीवन की कालख कजल दी कोठड़ी दे चंदे, फिर भी हाथ दागे ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहते ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे तिसमान। इक ते कोठड़ी कजल दे, जमीन काली दीवारां कालियां छत काली, और कालक बरस रही। अंध परे तिसमाए, दूसरे अंधे कालक दिखाई नहीं देती, कालक पै रही है कालक दिखाई नहीं देती। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देते। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहती है पाप ते प्यारा लगता है, होवेगा बुरा जगत लई प्रभु लई मनुख नूं ते प्यारा लगता है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे तिसमाए, पाप पाप ही नहीं दिखाई देता, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देता, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देता, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल जग का जल की कोठड़ी अंध परे तिसमाए, हों बलहारी तिन को पैस जो निकस जाए। कबीर कंजन में सदके जाना उना दा, उना तो बलहार ने जाना। जन्म होया कजल दी कोठड़ी दे, पर हत्था नू दागी नहीं आना दिता, पैर भी दागी नहीं, मुंह मथे नू भी कालक तो बचाया। कबीर केंद्र में सदके जाना, ऐसे हाथ लबने संसार दे बड़े औखे ने, जिन्ना हत्था ने कदी गलत ना कीता होवे गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लबने बड़े औखे ने, जो गलत पासे गए ना हो। ऐसी रसना लबने बड़ी औखी है, जिसने गलत बयानी ना कीती हो। ऐसियां अखां लबनियां बड़ियां औखियां हैं, जिन्होंने गलत वेख्या ना हो। ऐसे कन लबने बड़े औखे ने, जिन्होंने कदी गलत सुने नहीं, और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहते मुश्किल है, अगर कज्जल दी कोठड़ी दे रह गए, कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गए। कबीर कहते मैं सदके जाना उस चले या ते कालक दे चाहे, पर पैर इस दे कालक तो रहत नहीं। जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे चाहे, पर काला नहीं होया। रिया ते संसार दे चे जो मैल है, मैला मलता एहो संसार, लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है, संसार मैल है, ये जिच निर्मल के में होना है। एक ढंग ते बंदे नो आ गया है, तन मैला हो गए, हाथ पैर मैले हो गए ने, वस्त्र मैले हो गए ने, धोल है तर। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नु चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पहनती है, आपे ही पहनती है। और मैल समाज नु चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुलां नू ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दी, बेऐबां रा लिबास उरिया नहीं दात। जो मनुख छुपांदा है, ढकदा है, सरमद कहिंदे ने, वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नु छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणा नु छुपाण दी लोड़ नहीं, औगुण नु मनुख छुपांदा है, गलत नु छुपांदा है, पाप नु छुपांदा है, दूजे नु ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नु ढकना पैंदा है, गंदगी नु ढकना पैंदा है। चाहे वह स्थूल रूप विच गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप विच है, चाहे बार गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन विच पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो महल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे रिवास हर किरा ऐ बेदी, सरमद कहिंदा है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे च बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया, पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनु छुपाना है वो पाप है, जिसनु ढकना है वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा, हाथ दे उते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान, पैर भर जान। अर्थ थोड़े सामने रख दी है, भावे कल खुलासा किया सी, पढ़ी है हाथ पैर तन दे, पानी तोते उतरस खे, खे नाल किधरे हाथ भर जान, महल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मथा भर जाए, कपड़े भर जाए, पानी धोते उतरस पाया, पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मथा साफ हो गए, पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मौत पलीती कपड़ा, जी किधरे मल मोत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए, दे साबुन लईए ओ दौड़े, तो पानी दे नाल नाल फिर साबण, उस साबण दे देंदे हां पानी दे नाल, उस मल नू शरीर दी मल नू कपड़े चो कढ देंदे, पर भरिए मत पापा के संग, अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल दस मने, चूंकि जीवन भी भर दुराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे चे हजारा लखा आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन इन्हों पापा धोन असमर्थ होता है, तो पाप नाल चलते हैं, अगले जन्म चलते हैं, तो पिछले भी पाप ते नवे होर छुरे, इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जाते हैं, वधदे जाते हैं, वधदे जाते हैं। और मैं एक दफा दोहरा दिया, दस पापा दे चों चार पाप ते जबान दे मनते हैं, व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये चार पाप रसना द्वारे हम दे मन करदा है, तीन पाप मन खुद करदा है, जबान की लोड़ ही नहीं, की करता है बुरा सोचता है, किसी की जान बारे एक बाप, बुरा सोचता है किसी के माल बारे दूसरा बाप, बुरा सोचता है किसी की इज्जत आवरू बारे ये तीसरा बाप, ये तीन बाप मन करता है, तीन पाप ही तन दे ने, लेकिन अक्सर मनुख तन नो पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है, तीन पाप ही तन दे ने, किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, ये दस पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रतिदिन होंदे रहिंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है, इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी, ये पानी नाल नहीं धुलेगी, किसे तीर्थ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नूं धो दे, नहीं धुलते, भावे ऐसियां मनोता ने, ऐसियां धारणावां ने, चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान कीता जाए पाप धुल जाते हैं, माघी ते प्रयाग राग दे इशनान कीता जाए पाप धुल जाते हैं, ਤੇ ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ।
2: ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਪੜੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਮਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ, ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਪੜ ਲਈਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਹਉਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰੇ ਚ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਅਸਲ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਆਂਦੜ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਉਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਣ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਣ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ, ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਰਨੋ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਤੀਨ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ मैं क्या एक तरीका है संघर्ष का, मैं नहीं मानता, मैं आ नहीं मानता। वह प्यारे हो बंदे की हस्ती की है जी। मान लो जे आप गुरु सामने या किसी वाहगुरु सामने कही जी नहीं मानते, मेरे गुरु साहब तो कहते कीता करना सर्व रजाई किच कीच है, जे कर सकी है साडे कोल की ताकत असी कुछ कर सकी। कीता करना सर्व रजाई किच कीच है, जे कर सकी है अपना कीता किचू न होवे, ज्यों हर भावे त्यू रखी है मेरे खर जियो, सब को तेरा वस असा जोर नाही। यह है समर्पण, ये तेरे हाथ च। मैं अर्ज की समर्पण वाला तरीका बड़ा वधिया जे, रब नाल संघर्ष करने वाला तरीका बड़ा गलत है। आखन जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगन दे ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मनसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वेख है सो, जिदे हाथ ताकत उन्हें अपनी ताकत लानी, तेरी ताकत काम नहीं आनी। जिस हद जोर कर वेख है सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। महाराज कह रहे हैं मेरे खर्जी सब को तेरा वस असा जोर नाही, जे किच कर हम साके ज्यों पावे त्यों बख्श। इनू गुरु जी ने कहा जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। मैं बेनती करा पहला शब्द में वरत्या सी जी सबर, दूजा शब्द रजा, तीसरा तस्लीम। ए तीसरी अवस्था ओ वे प्यारियो जिथे रब दी वैगुरु दी गुरु दी वापरी कोई खार गल ही मिठी लगन लग पैंदी, जिन्हों आपा कहने भाणा मिठा करके मनिया। गुरमुखो तीसरी अवस्था है जो बंदे नू परमात्मा दी कीती हुए तेरा किया मीठा लग है, हर नाम पदार्थ नानक मांग है, वो चीज मिठी लगन लग पैनी जो परमात्मा कर रहा है। देखो अज असी भाई साहब भाई तारू सिंह जी नू याद कर रहे हैं। मैं थोड़ा जा आप जी नाल इतिहास जरूर सांझा करके जाना, क्योंकि उन्हां दा परसों शहादत वाला दिन निकले है। ते अक्सर असी सुनने भाई साहब शहीद होए, पर किवें शहीद होए? आपां कहां खोपड़ी ला के, खोपड़ी तो बाद तां जींदे रहे हो। अंतला समा रतन सिंह पंगू लिखदा है कि साखी तारू सिंह बदेही न्यंग की, शब्द वर्द है बदेही दा लफ्जी अर्थ हुंदा देह विच रह के भी देह तो उपर उठ जाना। बदेही दा अर्थ शरीर च रह रहा ते शरीर तो उपर उठ रहा। भाई तारू सिंह जी दा जिहड़ा पिंड है आप जी नूं पता होना, माझे दे विच तीन चार पिंड बड़े नेड़े नेड़े शहीदां दे, एक सिंघपुरा, एक जी अपना पाहो पिंड, ते तीसरा पूला। मैं तकरीबन दो कथावां ते कथा करके, एक ते भाई साहब दे पिंड उन्हां दे खेतां च गुरुद्वारा है भाई तारू सिंह जी उन्हां दे, पूला पिंड, ते पूले दे बिल्कुल नेड़े है बाबा दीप सिंह जी दा पिंड पाहू पिंड। याद रख सुल्तान पिंड अमृतसर च है, पाहू पिंड बाबा दीप सिंह जी दा जन्म स्थान है। मैं जात गोत नहीं करदा, दोनों संधु ने, भाई तारू सिंह जी भी ते बाबा दीप सिंह जी भी। भाई साहब भाई तारू सिंह जी इन्हां बारे एक खोज ए भी है, एक विद्वान ने यह भी लिखा इन्हां दे पिता जी, एक नहीं लिखा कि मुक्तसर दी जंग विच शहीद हुए सन, उन्हां ने शब्द कहा। इन्हां दे सन्मान योग पिता दा नाम सी भाई जोध सिंह जी, भाई तारू सिंह जी दे पिता दा, पिता शहीद होया। एक इन्हां दी भैण सी, भैन सिरों नंगी, सिरों नंगी का मतलब समझने ना, ओदे हसबैंड दी ओदे पति दा अकाल चलाना हो गया सी, उस बीबी दा नाम सी बीबी तारो। फिर सुनियो भाई तारू सिंह दी भैन दा नाम बीबी तारो है, इन्हां दी माता ते दोवें भैन भरा ते इन्हां दे खेत अज भी है ने जी, जिथे गुरुद्वारा बनिया जिथे दुष्ट पूला रहिंदा सी, ज्यादा पूला जरा ओदे करके पिछले दिन भाई बलविंदर सिंह उन्हां दा जिक्र होया जटाने दा। याद रखियो असी जदों कॉलेज पढ़दे सी उन्हां दा पिंड बिल्कुल साडे कॉलेज दे नेड़े सी जटाने दा, क्योंकि हकूमतां बाद विच बहुत कुछ कर दिंदियां ने, वह जदों भी मिलदे सन ना भाई बलविंदर सिंह, चलो उदो इक तिगर भी इको जी उम्र दे सारे सी, ए नहीं कि मैं बहुत उन्हां जानना, पर सची मुची उह सिंह जदों भी मिलना ओदे बुल गुरु दी बाणी दे जा विच हिलदे ही रहिंदे सन। ए पूल ਪੂਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੂਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਸਮਝੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਜੀ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੇਸ ਵਾਹਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੇਸ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕੇਸ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਕੇਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਈ, ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਚ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸਰੇ ਮੂਯਮ ਹਰ ਸਰੇ ਮੂਈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਰੇ ਮੂਯਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਨ ਅਜ ਕਰਮ ਤਾਬ ਗੋਇਓ ਬਸ ਵਹਾਕਰਾ ਦਮ ਬਦਮ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜੀਵ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਮ ਨੇ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਜਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਪ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੇਸ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਕੇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਦਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕੇਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ।
3: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
4: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखा दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

तेहीन संत का निंदक दुखिया अरनीन। संत के निंदक कौ सर्ब रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी कौ डाल लागै, संत के दोखी कौ सब त्यागै। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा बिकारी। संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दोखी कौ नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी किता काज ना पहुंचै। संत के दोखी कौ उद्यान भरमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै। संत का दोखी अंतर ते थोता, ज्यों

संत का दोखी इं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बू आड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरी पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी न मरै न जीवाई है। संत के दोखी की पूजा न आसा, संत का दोखी उठ चलै निरासा। संत का दोख न त्रिष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब कर तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे ते आवो सास ग्रास। सब कछ वरतै तिसका।

नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मह तोल, लाल खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोहे, मुख उज्जल हर दरग है सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है, चरण साध के धोए तोय पियो, अर प्रसाद कहो अपना जियो, साध की धूर करो इसनान, साध ऊपर जाइए कुरबान, साध सेवा वडभागी पाईऐ, साध संग हर कीर्तन गाईऐ, अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै, ओट गई संतै दर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया, मृतक कौ जी वल नहार, भूखे कौ देवत आधार, सब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लैणा पाहे, सब किस तिसका ओ करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जान सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रचीत, भगत भगत सुनिए तिह लोए, जाकै हृदय एको होए, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दृष्ट सच आयाकार, सच वरतै सच अपासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक

मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनी है करता कै। राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी। त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहि सगल देव हारे अवगाहि। पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे। त्यो गुण मह जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए। ऊंच नीच किसके स्थान।

नाम की तारी पुरिया सब पवन, नाम का संग उधे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की माणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसै बुझाए तिसै सब भले। सत नाम प्रभ का सुखदाय, विश्वास सत नानक गुरते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाकर हृदय प्रवेश, सत निरत बूझा जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जान है अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार, अवन बूझ करत विचार, करते की मित न जान किया, नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद।

जन का सेवक सोवट भागी, जन का संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आदि सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत।

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवस्यान पसगली छा।

ऐसा गुर बड़भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियाव जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होए संत।

बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख प्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्नि मह रखै, गुरप्रसाद को बिरला लखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम।

तब बंद मुक्त कहो किसका उगनी, जब एक हर अगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सक्त कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै।

जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतार है, तो सगन अप सगन कहां भी चार है। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद समाया, उहां किसह व्याप्त।

सिर उपर ठांडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर्जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो

अस्तपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दिष्टा है नौ निध अंगमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा।

हो सो ना ही बुरा ओरै कहो किने कछ करा। आप भला करतूत आत्मिक की आपे जान है अपने जी की। आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच ताकि गतमित कहीं ना जाए। दूसरे होए ता सोच।

सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महंत कह माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सन

तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में है सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री।

पत जाए अष्टपदे दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण विखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले तौ मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर सियों नाही चारा ताकौ कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै अनंत उलास अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बाहर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगे राखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलनहार लपट रहे होते हैं अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै ने ताको हाथ न आवै के हे मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दब कौ हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पे सफल देहे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह हो।

जिसके अंतर बसे निरंकार, इसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप मान, आपह आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म।

मेव नानक प्रभ शरणागते कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे जे प्रसाद छत्ते अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परमगत पाव है जे प्रसाद बस है सुख मंदर तिसह ते आए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जाव है जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताक है जे प्रसाद तुझ को न पहुंचै मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू है चार ब्योहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुरप्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभ को मूल न मन हम विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूढ़ तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन हूं लया। जित जित लाभो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की आचर्य कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आव है बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं पावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कभू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान।
ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मनमा है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सर जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भक्त कीर्तन संग रचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत का पावै सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूक्ष्म मह जानै स्थूल चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मह जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है प्रमाण, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सुझ ही परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी।

ना पावै। कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौहिर है, कई कोट पर दुख।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरक निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत।

कई कोट तत्व के बेते सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सत सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है, अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं को, नानक तिस बलिहारण है।

0: कबहू महा क्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की होतरवाल, कबहू होए बह बड राजा, कबहो पेखारी नीच का साजा, कबहू अप कीर्त में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: स्वांगी दिखावे जो प्रभावे ते वै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत इहो पावे, उस स्थान ते बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै। आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेंज जाका मन होए, कौ नानकता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख का उठतावै, तृप्त आवै माया पछ पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त हो।

जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस तीनों सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझै देखै करै विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करना हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनन पर एक कैसोए। अपने चलते आप करना हार, कौतक करै रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

थम है थम मन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम मन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिस चितार जो कच करे सोई सुखमान भूला काहे फिर अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज

राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सज जाका है सर्व थोक सुनी है करता कह राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहि सगल देव हारे अवगाहि पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मह जाको परमाए जन्म रह फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान।

नाम की तारी पुरिया सब पवन, नाम का संग उदे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी माणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसै बुझाए तिसै सब भले। सत नाम प्रभ का सुखदाय, विश्वास सत नानक गुरते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाकर हृदय प्रवेश, सत निरत बूझा जे कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार अवना।

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्श सब पाप मिटाव है, अवस्यान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन

ताब है मूर्ख मना सोत मीत कुटंब अर बंता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ।

बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख प्रम गया। इच पुनी सरदा सपूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाना, सो क्यों बिसरै जे किया जाना। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्नि मह रखै, गुरप्रसाद को बिरला लख है। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गंढ है। गुरपूरा तत् है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम।

जब आकार एहो कछ न दिसटेता, पाप पुन तब कहते होता, जब धारे आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग।

प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हर अगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपै प्रवीन, तै वेद कतेब कहां कहु चीन। जब अपने आप उतारै, तो सगन अपसगन कहां विचारै। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद समाया,

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रापे कहो नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माह नानक बहुर नया है जाए इस ते दूर कहां को जाए उबरै राखन हार ते आए।

सिर उपर ठांडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए।

सुनत कमावत होत उदार आप तरै लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सन

तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ है। देखदे आं असीं सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने। उपर नहीं मोती मिलदे, किनारे ते नहीं मोती मिलदे। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनु नौ खजाने दी प्राप्ति हो जाएगी, नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहंदे ने, गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, ओ दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नू ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया है पानी, समुंद्र सहा सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर दे च हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन। गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उते जितने पहाड़ ने, इतना इसदे घर दे च सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन। कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे, ओ कीड़ी जिस दे मन दिच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है। कीड़ी गिनती मिनती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं, सामाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है, और किसी दी निगाह भी उस ते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले। पर सतगुरु कहिंदे जे उसके हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए, ओ किधरे अंतरमुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसके पैरां दी खाक नहीं। क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है ओनू महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है, जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन विच प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर ये सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है, होर अगे जाना है। सत्संग दा यही लाभ है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके। घबराहट आउंदी है, गहराई दे उतरदे आ। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आशा ते बजदी है,

शौक ते वद्दा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जांदा है। होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटांदा है, जप करदा है और बाणी सुनदा है, बहुत सुनदा है, बहुत जप करदा है और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नूं होर गहराइयां दे च ले जांदा है, तो रिधियां ते सिधियां उसदा स्वागत करदियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ए मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिधियां मिल गईयां, हुण ए सिद्ध हो गए, ए सिद्ध पुरश हो गए। इदे बोलां दे च बरकत आ गई है, इदे हत्थां दे च शक्ति आ गई है, इदे कदमां दे च क्रांति आ गई है। जिस पासे इस दे कदम जाणगे, अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा। इस दे हत्थ जिस पासे पसरनगे, महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे। और इस दी दृष्टि जिस ते जाएगी, अमृत बरसाएगी। इदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते ले जान, ओ प्रगट होणगे। तो बोलां दे सत्य आ जांदी है, हत्थां दे च बरकत आ जांदी है, कदमां दे च क्रांति आ जांदी है, सिद्ध हो गए। हुण ए बोल मामूली बोल नहीं, ए हथ हुण मामूली हथ नहीं रह गए, ए पैर हुण मामूली पैर नहीं रह गए। यही कारण है कि भारत दे च आदि काल तों आख्या जांदा रहा, सिद्ध दे चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि पैर आम पैर नहीं ने। इदे हत्थां तो असीस लईए, इदे हत्थ आम हत्थ नहीं है। और इदे बोल सुनिए, ए बोल आम बोल नहीं ने, खास बोल ने। हत्थां नाल, पैरां नाल, बोलां नाल आद काल तो साडे देश दे श्रद्धालु लोग संबंध जोड़दे रहे ने, उन्हां नाल जो सिद्ध सन, जिन्हां नूं दैवी शक्तियां मन दे अंदरों प्राप्त हो गईयां। पर अजे भी पूरा मन विच उतरिया नहीं गया, हुण होर डुबकी लानी है, तह विच पहुंचना है, जिथे मन दी दुनिया मिट जांदी है, खत्म हो जांदी है और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जांदी है। मन तों जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करदा है, होर गहराइयां दे च जांदा है, और गहरे जाण दा इक्को ही तौर तरीका है, जप। तो समाधि लीन हो जांदा है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। महान बिस्मादी अवस्था उसकी बन जाती है, परम आश्चर्यता प्रकट हो जाती है, और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है, तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनु परमात्मा कहंदे ने, जिसनु ईश्वर कहंदे ने, जिसनु परम व्यापक शक्ति कहंदे ने। बस उस तक पहुंचदे आ इस समाधि लीन हो जांदा है, और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकदा, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा, इस तरह दी अवस्था नूं कहंदे ने कि इस नूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख उदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने, उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने, चिंतन नहीं है। उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है, काम है, राम किथे। उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहंदी है, और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहंदा है, समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के, मन दी दुनिया तो पार हो के,
कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। उन जो कुछ हो रहे है, जैसा हो रहे है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नो बहा लेंदा है, विरोधता नहीं करदा। ए दरिया, जिस पासे हुन तू ले जाना है, मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा, थकेगा। और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नो बहा लेना, इसे नु कहंदे ने रब दी रजा दे। इसने अपने आप नु जोड़ लिया है, जिधर रब रजा है वैन ते दाउ गाउ करे। जिस पासे हुन रब दी रजा है, बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नु तोर देता है, जिंदगी नु छोड़ देता है, ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा। खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो।

द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी शैवं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणों में सब दुख हरो

नहीं है, तेरी तो सदके जाना है, कुर्बान जाना है, निछावर जाना है। प्रेम निछावर होना चाहता है, सदके होना चाहता है, कुर्बान होना चाहता है। लोग दूजे की कुर्बानी लें, बगौर मुताला करना। लोग ते दूजे नु कुर्बान करना चाहता है, प्रेम दे मनुख स्वयं कुर्बान होना चाहता है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों दस्त वस्ता अर्ज करते ने, गुप्तम के जानते हम दाता, अज मैं सोचता सी थोड़े कदमों च की रखा की रखा, सब कुछ मामूली लगता सी, सब कुछ कुछ लगता है की रखा। फिर मैं ये गुरुदेव सोचे है कि जान मेनू बड़ी प्यारी है, अपनी सब तो ज्यादा जान ही प्यारी होंगी। महाराज जे कबूल करो ये जान थोड़े कदमों च रख देगा, गुप्तम के जान दे हम। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रवान करते हैं, नंद लाल तू व्यापारी का लड़का है, तेरा पिता बहुत वड्डा व्यापारी सी, फिर दीवान बनया, व्यापार खड़ा है देन ते लैण ते, लैण ते देन, लैना ही लैना है, लैना ही लैना है, देना कुछ नहीं लो, लैना ही लैना है, लैना ही लैना है, देना कुछ भी नहीं लो। फिर ऐसा भी है, देना है लेना है, लेना है देना है, व्यापार व्यापार देना ही देना है, बदले च कुछ भी नहीं लेना, दान दाता, देना ही देना है, बदले च कुछ भी नहीं लेना, ये मनुख नू दाता बनांदा है। देना है लेना है, लेना है देना है, ये मनुख नू व्यापारी बनांदा है। लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, देना कख भी नहीं, ये मनुख नू सोम बनांदा है। मनुखा नू इना तिना श्रेणियां गिण सकते हैं, सोम व्यापारी दाते। सब तो ज्यादा भीड़ मिलेगी सोमा, और कबीर कहते ने सोम बंदा धन दा चौकीदार आंदा है, मालिक नहीं आंदा। सोमे धन राखन को दिया, मुकद गए धन मेरा, ये धन तो ना आप सुख लवेगा ना बच्चिया नु सुख लैण लवेगा, वह चौकीदारी करेगा। ये चौकीदार ये रखवाला है, ये मालिक नहीं। इस हिसाब नाल मनुखता नु तीन हिस्सों च वंडिया जा सकता है, सोम व्यापारी दाते। सतगुरु कहने नंद लाल तू व्यापारी का लड़का है, बहुत वड्डे व्यापारी, तू कहना मैं जान दे अर्पण करा, तो फिर बदले च तैनू कुछ चाहिदा भी होना है, जान दे बदले तेरी कोई मंग भी होएगी। हुण सतगुरु दे अगों गलत बयानी किस तरह करे, कहिंदा हां महाराज तुसी खुद पढ़िया है, तुसी बहुत गहरा वेख लिया, मंगते है की चाहिए तेनू, जान दे इवजाने च जान दे बदले च तेनू की चाहिए। भाई साहब भाई नंद लाल गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाह है तो तू एक मेर दी निगाह कर दे, बस बदले च मेरी जान दे, मैं निछावर करन नू तैयार। किसे दे हाथ भी इतना नहीं बंड सकते, कईयां दियां नजरां बहुत कुछ बंड देंदियां, बहुत कुछ बंड दे, किसे दे हाथ भी इतना नहीं खो सकते, पर खिमा करने कईयां दियां नजरां बहुत कुछ खो देंदियां, बहुत कुछ खो देंदियां, बड़ी करोपी डा देंदियां, बड़ी हिंसा कर देंदियां। आंखें

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगता सी पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वद्दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन बुककीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे ता अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।